कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट

से मैं और तू. साइलेश का फेवरेट गाना है ये. ठीक है, दैट्स योर फेवरेट सॉन्ग, बट लिटरली आई डू नॉट लाइक दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. माय चॉइस ऑफ धुरंधर इज द नेक्स्ट सॉन्ग. सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, टचेस द हार्ट एंड यू फील लाइक हाँ ये गाना है. इट्स कॉल्ड मेरे हो तुम. कमिंग अप फॉर यू राइट हियर ऑन ईस्ट एफएम. साइलेश सॉन्ग और रहमत सॉन्ग, लेट मी नो 0701 106 106. कॉफी लगी है दाव पे, जल्दी बताओ.

0: में दोनों बहुत ही बढ़िया सिंगर्स हैं, अलका याग्निक कुमार सानू। अलका याग्निक की हालत पर आजकल काफ़ी तशवीश पाई जाती है, कहते हैं इनको हियरिंग लॉस तो हुआ है, सुन नहीं पा रही। पर गए दिनों एक समय एजाज पाने के लिए आप व्हीलचेयर में जब दिखी तो इनके फैंस को बहुत बुरा लगा। खैर, खुदा से दुआ है कि आप जो भी है सेहतियाब रहें।
1: प्रवीण जी, चांद की चांदनी रातें, ये गाना पाकिस्तानी फिल्म दो पता का है, 1952 की मूवी है, जिसको नूरजहान ने गाया है। ये ब्यूटीफुल गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। चांदनी रातें,
2: ईस्ट एफएम सेलिब्रेटिंग योर फेवरेट ओकेजन। ईस्ट एफएम
3: केन्या'स प्रीमियर
2: एशियन मिक्स।
3: एशियन मिक्स, इट्स 10:23.
4: Kakamega Mambo VP, guess who is coming to your hometown? It's the East FM and Radio Africa Roadshow on 31st July. It's the roadshow that gets everyone dancing, laughing and partying all day as you meet and hang out with Radio Africa presenters. Prepare lots of ugali. Turn up with your Bota Bota crew. We'll come with the entertainment. To Cheze Isikuti. It's Radio Africa Kakamega Roadshow, 31st July. This will be epic.
5: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.
6: रेशम की डोरी

हादसा में ना आपकी जो गाड़ी होती है आपका साथी होती है जी हाँ कितने बरस आपका साथ देती है और समिन अच्छी लगने लगती है मोहब्बत हो जाती है अपनी गाड़ी के साथ और सैलाब में समिन जब तूफान होता है पानी बह आता है बाढ़ आती है तो आपको पता चलता है कि आपकी मोहब्बत अपनी गाड़ी से कितनी गहरी है और समिन ये मिसाल मिली है भारत में आजकल सैलाब आ रहा है तो समिन बहुत शदीद बारिश हो रही है पानी की सतह ऊपर जा रही थी गाड़ी बहने लगी किसी की ब्लू रंग की गाड़ी है मालिक निकल कर इसे कोशिश करता है रोकने की दोनों हाथों से पकड़ लेता है उसका बम्पर और समझ चिपक कर गाड़ी बचाने की कोशिश करता है कि गाड़ी कहीं पानी की नज़र ना हो जाए लेकिन फिर बाद में मदद आती है लेकिन ये जो वीडियो है लोग इतने पसंद कर रहे हैं समझ जिस तरह से भी उसने पकड़ी हुई है ना अपनी गाड़ी ऐसा लगता है जैसे कोई इंसानी जानी नुकसान हो सकता है तो कोई मदद आ गई है लगता है कि फिर गाड़ी डूबी नहीं है वरना गाड़ी इस मालिक से रूठ कर जा भी सकती थी

और फिल्म थी फागुन। समझ कितना सिंपल म्यूजिक था, कोई भी, सिर्फ ढोलक की आवाज आ रही है। यासर, टुडे इन हिस्ट्री, आपने कहा है 2020, जगदीप कॉमेडियन थे समिन, इनका नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, उनकी वफात हो गई, तब इनकी उम्र 81 साल, 81 थी। लीविंग बिहाइंड एन अनपैरेलल्ड लेगेसी एंड इज फेमस सूरमा भोपाली, जो कैरेक्टर उन्होंने किया था बहुत अच्छे, यह सर शोले में सूरमा भोपाली बहुत ही याद करेंगे लोग। और हरमीत कौर का आज उनकी बर्थडे है। कौन है हरमीत कौर? नीतू कपूर। शी बिगैन हर जर्नी एज अ चाइल्ड स्टार, बेबी सोनिया, एंड देन शी डोमिनेटेड द 70s इन मैसिव हिट्स लाइक अमर अकबर एंटनी, दीवार। आज वो 68 साल की हैं, यानी 70 से 2 साल कम। सर नीतू सिंह के बारे में यही कह सकते हैं, लाइट रोल्स उन्होंने किए, छोटे छोटे रोल्स अच्छे थे, क्योंकि इनकी जो एक्टिंग थी बड़ी नेचुरल थी। सो थैंक यू जबीन हिरानी, वी ओनली गेट टू हियर दिस ओल्ड एंड गोल्डन सॉन्ग्स ऑन योर प्रोग्राम। या जी, इसीलिए है ये वक्त वक्फ है ओल्ड सॉन्ग्स के लिए। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो सुना दीजिएगा, अमीर अली राणा ने कहा है। ओके, पहले ये सुन लें।

0: और लंदन में जगदीप नांद्रा बहुत अच्छे, परवीन भट यहाँ पर, और नलिनी आरशा क्या कहती हैं, नलिनी कहती हैं कि देखो एज यूजुअल वी आर ऑनर्ड टू लिसन टू योर प्रोग्राम, ग्रेट द बीट ऑफ ओल्डन सॉन्ग्स क्लासिक नंबर्स इट्स विंटेज दे आर कैटेगराइज्ड बाय देयर पीरियड एंड जॉनर यू ट्रूली प्लीज एवरी लिसनर. आगे भी लिसनर को प्लीज करने के लिए एस डी जॉन भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे नलिनी आशा. और हम बात करते हैं मंजुला से.
1: सबको नमस्कार परवीन जी, आई स्माइल इज ए स्पिरिचुअल परफ्यूम यू स्प्रे अदर्स. गुड मॉर्निंग.
0: स्पिरिचुअल परफ्यूम है एक स्माइल, क्या बात है. और ओफ अल्लाह अल्लाह जवाब सॉन्ग जबीन ईरानी, मुझे पता था आपको पसंद आएगा. चंद्रिका वासंत गुसाई एंजॉइंग ऑल द सॉन्ग्स.
2: प्रवीण जी तुम रूठ के मत जाना, ये गाना फिल्म फागुन का है, 1958 की मूवी है, जिसको मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है और जिसको कमल जलाबादी ने लिखा है और जिसकी धुन ओपी नैयर ने बनाई है. ये ब्यूटीफुल गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: और रेखा शाह क्या कहती हैं, मेरे ख्याल से इनका I'm not sure. Hello, Parvinji. This is my voicemail. Oh, okay, okay. देखते हैं.
3: Hello, Parvinji. Assalamualaikum. रेखा शाह बोल रही हूँ आपके सीओ. सबसे पहले तो बेमिसाल अंदाज के सभी listeners को Happy Wednesday बोलना चाहती हूँ. और दूसरा, आज मेरी best friend अपना जन्मदिन मना रही है. मेरी best friend का नाम है भारती बेन राजा, तो मैं उन्हें विश करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू विश भारती बेन राजा अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. एंड भारती बेन यू ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड स्माइली. ओके बाय.
0: जानते हैं आप भारती राजा को, अगर जानते हैं तो आप भी उनको विश कीजिएगा हैप्पी बर्थडे हमारी जानिब से भी. रेखा थैंक यू. और यासर, sad news, man's best friend dog. Over 400 dogs were killed by residents of Hosana town in Ethiopia earlier this month in July for fear of rabies, after 3 children died from dog bites and 80 other were hospitalized. To Yasser ne kaha hai ki dekho abhi aapne janwaron ki baat ki, par dekhe kitna wafadar janwar hai, 400 ko qatl kar diya ऐसे जानवर को इथियोपिया में, सिर्फ इसलिए कि वेल वैसे ये बड़ी वजह है रेबीज, लेकिन ये तो जाने कि किसको रेबीज है किसको नहीं, उन्होंने बस अंधाधुंध कत्ल किया है. थैंक यू यासर. रमेश हरिया, आज रितु गुप्ता के हस्बैंड राकेश गुप्ता की बर्थडे है, जन्मदिन मुबारक हो मिस्टर गुप्ता, बहुत शुक्रिया. सोनल मोदा, ये प्रोग्राम रमेश हरिया ने भेजा था, आई मीन मैसेज. और सक्सेस स्टार्ट्स विद एवरी चैलेंज नॉट फ्रॉम द कंफर्ट जोन. बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं समीन.
4: भांगड़ा बॉलीवुड हिट्स एंड बैलेंस टू सिंग अलोंग विद
5: ईस्ट एफएम
4: केन्यास प्रीमियर
5: एशियन मिक्स
6: ऑल द ग्रेट सॉन्ग्स दैट मेक योर डे.

और दिनेश पोपट सिडकप कैंट से, क्या है कि मैं अपनी प्रेजेंस मार्क करवाना चाहता हूँ। जी हाँ, आप प्रेजेंट हैं दिनेश पोपट। आपने कहा एसपी जॉन, आई लव हिज वॉइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। समझ, ये गाना आप कह सकते हैं एक गाना, मुझे नहीं पता और भी गाए होंगे डेफिनेटली, लेकिन ये इतना मशहूर हो गया, हजारों गानों से ज्यादा शोहरत इस गाने ने हासिल की, तू जो नहीं है तो आपका फेवरेट है ऑफ कोर्स। आपने ये भी बताया क्योंकि आप लंदन इंग्लैंड में हैं, आपने कहा है कि देखो यहाँ पर तापमान कितना है, यूरोप में भी इस कदर गर्मी है, 32 से 40 डिग्री तापमान है, इतनी हरारत है, वाकई बहुत बुरा हाल है। कहीं पर अचानक गर्मी होती है और दूसरे दिन सैलाब भी आ जाता है, पर आपके यहाँ चलो अच्छा है सैलाब ना ही आए, आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होगी।

क्लबिंग करते हैं डांस करते हैं वगैरह इंदिरा नूई वाज वर्किंग द मिडनाइट टू 5 एएम शिफ्ट रात के 12 से 5 बजे तक वो काम करती थी और जैसे ही सुबह होती शिफ्ट एज अ डॉर्मेटरी रिसेप्शनिस्ट थी सुबह होती तो वो क्लास के लिए चली जाती क्योंकि वो डिग्री कर रही थी मैनेजमेंट में समय फिर ये सीईओ बनी लेकिन रसीला ने ये बात नहीं बताई कि हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया इंटरव्यू में किसी ने पूछा जिस औरत ने उनकी इंटरव्यू ली कि किस तरह आपका जर्नी रहा वगैरह वगैरह तो उसने कहा कि अगर मैं अमेरिका में थी तो सीईओ बनी हूँ अगर मैं भारत में होती तो ना बन सकती ना जाने उन्होंने क्यों कहा लेकिन ये कहा और काफ़ी भारतीयों को गुस्सा दिलाया इंदिरा नूई ने ये बात रह गई थी रसीला आपकी अब देखते हैं यहाँ पर किसने कोई आंसर करने की कोशिश की है सरोज फ्रॉम नारोक बिल्कुल ठीक और आपसे पहले कृष्ण सरोय ने भी यही जवाब दिया है सरोज फ्रॉम नारोक आप और लंदन से कृष्ण सरोय और आज सवारे मने ये जो है एनवेलप का लफ्ज क्या है हिंदी गुजराती में वो मुझे बता दें ताकि मैं देख कर पढ़ सकूं कि क्या है पूरी तरह स्पेल करें रसीला जी आप कहती हैं मैंने भी ये पढ़ा नहीं नहीं वो ठीक खबर है उन्होंने इंटरव्यू चलाई है इंदिरा नूई की और वो उसने कहा है

0: ये देखते हैं कि जितेंद्र
1: लिफाफा कह दिया, मैंने मैंने सवेरे लिफाफा मिला, थैंक यू जी।
0: नहीं, इसका मतलब मैंने कहा था स्मॉल भी आना चाहिए, सील्ड भी आना चाहिए, नॉट जस्ट कि आई रिसीव्ड एन एनवेलप। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है स्मॉल सील्ड एनवेलप। दिनेश पोपट, क्या बात है, आपने बहुत प्यारा सादा सा लिखा है। नहीं, दिनेश शाह है, दिनेश शाह, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ती हूँ। रसीला ने कहा है कि एनवेलप इज परवरियो, ये वड़िया वदिया तो नहीं हो सकता ना, परवरिया होगा। अगर कोई इसे प्रोनाउंस करके भेज दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। यही बात शमीम ने भी कहे, आज सवारे मने नानू बंद परब्यू मल्यू, परब्यू उन्होंने कहा, परद्यू नहीं, परब्यू। सो व्हाट इज द करेक्ट वन एनवेलप के लिए, प्लीज आप खुद कर दें। आज सवारे मने एक नानू बंद कावार मल्यू, कवर मल्यू। सी ए वी ए आर क्या हो सकता है सरोज? आज सुबह मुझे एक बंद लिफाफा मिला, बिल्कुल सही, कृष्ण ने भी यही कहा था, आज सुबह मुझे बंद लिफाफा मिला। रसिला ने कहा था कि नानो सील बंद परवरियो, परवरिया सील बंद। यही था कि ये सील कैसे कहना है, लेकिन उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ है कि नहीं। और जब समिन मैंने सवाल पूछ लिया और इतने जवाब आ गए हैं, फिर उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं है। जबीन ही रानी, छोटू बंद लिफाफो मलियो, बिल्कुल सही, और बंद लिफाफा बिल्कुल। कोशिश करें, मुझे नहीं पता कि सील्ड, समिन सील्ड का कुछ अलग हो सकता है कि यही रहेगा बंद। बंद तो सील किए बगैर भी हो सकता है ना। चलिए कोशिश करें।
2: East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: Kenya's premier Asian mix.
4: East FM.
3: Celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
4: East FM.
3: Kenya's premier
4: Asian mix.
5: It's 11:18.
6: We unlocked Gava for you. Now we'll get...
7: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
8: Giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
3: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
4: East FM.
3: East FM.
6: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: और सामने पहली बार बेमिसाल अंदाज में मैंने ये गाना शामिल किया है. अब प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि सील बंद. समय ये जो वर्ड सील है वो तो इंग्लिश का है, मे बी कि हम अपनी भाषा में इसको ले आए हैं, लेकिन ओके, पर वो फिर हिंदी का लफ्ज नहीं बनता. ठीक है, सील बंद कि सील किया हुआ है. बंद लिफाफा सरोज आपने कहा है, परमिंदर चाना सत श्री अकाल कहते परवीन जी. गूंद नाल जोड़िया होया लिफाफा, यही चीज मैं आपको कहती हूं कि हमारी भाषा में देखो वो सील कह दिया, गूंद के साथ जोड़ा हुआ लिफाफा. छह अल्फाज हैं परमिंदर, लेकिन आपने ठीक कहा है कि यही होता है, लेकिन एक लफ्ज मिलना मुश्किल है.
1: हेलो प्रिय जी, ठप्पे बंद लिफाफा मीन्स सील, सील जड़ी हुंदी है ना ठप्पा कहंदे आ, ठप्पे वाला मेनू लिफाफा मिलिया. थैंक यू.
0: अच्छा ठप्पे वाला, अच्छा ठप्पा लगाया हुआ है. ओके दीपक वडगामा, सील पैक इन हिंदी, इट्स सील बंद परिबीडियों. ओके, मुझे ये स्पेलिंग में थोड़ी लग रही है कुछ, दीपक वडगामा, बट थैंक यू. अब देखते हैं कि प्रोनाउंस किस तरह करना है गुजराती में एनवेलप को.
2: नानू बंद परबीडियू, सोनल फ्रॉम मोम्बासा.
0: अच्छा तो दीपक वडगामा ठीक थे, परबीडियू परबीडियू. ओके थैंक यू. छोटा बंद लिफाफा, आई थिंक इट्स फरफरू जबीन. फरफरू क्या होता है प्लीज, इट्स अ गुड वर्ड, मैंने नहीं सुना हुआ फरफरू. पर बीडियू ये आपने भी बता दिया है, थैंक यू. दिया बिले माई यस, एन एनवेलप कैन बी क्लोज्ड विदाउट बीइंग सील्ड, वन कैन सिंपली टक द फ्लैप इनसाइड द फोल्ड एंड डाउन. राइट नाजनीन, बिल्कुल सही है ना. तो अब सील्ड को करना था हमने, उन्होंने कहा है गूंद के साथ जोड़ा हुआ लिफाफा. समझ, इतनी देर में तो कोई सुनने वाला आगे ही बढ़ जाए, बात ही ना सुने आखिर तक. पर नाजनीन थैंक यू. और बेमिसाल अंदाज के लिसनर्स को शबीर अहमद का सलाम मिल चुका है. अब इंडिया चलते हैं. मंजुला विश्वकर्मा.
3: परवीन जी, आज सुबह मुझे मोहर बंद लिफाफा मिला.
0: क्या बात है, मोहर बंद लिफाफा, वाह. और दिनेश, नानो माहूर वालो लिफाफो. दिनेश शाह जी बिल्कुल ठीक लग रहा है ये तो, है ना. रितु गुप्ता.
4: प्रवीण जी नमस्कार. पहले तो आज मेरे हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे है. वैसे तो मेरे को ग्रुप में सभी गुड विशेस भेज रहे हैं. तो दूसरा आपने जो पूछा है वो टेप से बंद किया लिफाफा भी कहते हैं. और प्रवीण जी, जब हम छोटे थे ना, छोटे क्या बड़े भी हो गए थे, वो हम थुक नहीं होता था तब, उसमें ना गम भी होती थी, थुक से बंद किया हो लिफाफा. रितु गुप्ता.
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पहला ही ऑप्शन हुआ करता था कि आपने थूक के साथ उसको कर देना है बंद. वाह क्या बात है. और रितु, आपके शौहर की आपको बर्थडे कंग्रेचुलेशन, लेकिन उनको पास कर दीजिएगा ईस्ट एफएम की जानिब से. अच्छा दिनेश पोपट फ्रॉम सिटकप, हट जाओ दीवाने आए, आई हैव हर्ड इट आफ्टर 65 इयर्स. आई नो, पता क्या दिनेश पोपट, बात यह है कि कई बार मैं इसको सोचती थी सुनाऊं ना सुनाऊं, फिर छोड़ देती थी. कल मैंने सोचा रात, मैंने कहा नहीं ये लेट्स ट्राई, तो इतना अच्छा गाना निकला, ब्यूटिफुली कंपोज भी था. सो दिनेश पोपट. अच्छा समय ना, इसका मतलब कि परबीडियू हो गया है, परबीडियू. प्रफुल्ल पटेल ने भी सील बंद लफाफा कहा था, प्रफुल्ल. ओके सील बंद के सील किया हुआ है, तो ठीक है आपने जो कहा है करेक्ट है लेकिन अब इसको क्या करेंगे ओ एपेटाइजिंग ऑर्डर एपेटाइजिंग ऑर्डर आप कहीं से गुजर रहे हैं या आप कहीं अंदर गए हैं और आप कहते हैं वाह व्हाट एन एपेटाइजिंग ऑर्डर उसका मतलब क्या है एपेटाइजिंग ऑर्डर का हमारी भाषा में और ताकि इतने ज्यादा अल्फाज ना इस्तेमाल करें हैं

0: समिन, हमने वो जो सील्ड एनवलप को समझ लिया है, एक्चुअली तो ऑर्डिनरीली बंद किया हुआ अभी स्टक सील्ड ही कहते हैं, लेकिन हमने वो सील देखी है। प्रफुल्ल पटेल का सबसे करेक्ट आंसर है मोहर बंद लिफाफा, मोहर बंद, क्योंकि सील को मोहर कहते हैं। वंडरफुल। और अरफा दीन ने कहा है गूंद, क्योंकि समय गूंद है, आप गूंदा नहीं कह सकते। आपने कहा गूंदा हुआ लिफाफा, आई डोंट थिंक सो कि गूंद लगा लिफाफा, गूंद जिसमें लगी हो इस तरह से, लेकिन ये गूंदा लिफाफा तो मैंने कभी नहीं सुना। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पर गुंदर साथे चौटालव्य, नहीं मैंने कहा था कि आई वॉन्ट सील्ड, जैसे इंग्लिश में एक लफ्ज़ है ऐसा एक ही हो, मोर बंद वॉज द क्लोजेस्ट। अच्छा, शुरुआत का खाना, नो दीपक, एपिटाइजिंग ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है वो भी देख लें, एपिटाइजिंग ऑर्डर, या मैं कह सकती थी एपिटाइजिंग अरोमा भी कह सकते थे। सो ये शुरुआत का दीपक नहीं हो सकता। और यहाँ पर प्लीज़ मुझे अब ये वीडियोस मत भेजें, आपकी वीडियोस रद्दी जाती हैं, छोड़ के देखें वीडियोस को।
1: सलाम और आदाब शहजादी साहिबा, सबको मेरा सलाम। और जो आपका सवाल है ना, उसका है वाह वाह क्या मज़ेदार खाने की खुशबू, दिल चाह रहा है खाने को।
0: अच्छा, दिल चाह रहा है खाने को। और कितने एपिटाइजिंग ऑर्डर आपने बता दिया है क्या है, पर कम अज कम अल्फाज में, जैसे कि इंग्लिश में है एपिटाइजिंग ऑर्डर दो लफ्जों में, आपने भी कम से कम लफ्जों में बयान करना है कि एपिटाइजिंग है क्या। ओके, ऑर्डर का तो आपको पता चल गया है, एपिटाइजिंग।
2: प्रवीण जी, वैसे तो हिंदी में अल्पहार बोलते हैं, अल्पहार, लेकिन ये कोई खास यूज नहीं होता। ऐसे होता है कि खाने से पहले जो स्टार्टर यानी कि मुख्य व्यंजन मंगवाया जाता है ना, उसको हम एपिटाइजर इंग्लिश में बोलते हैं। ऋतु गुप्ता।
0: ओके, पर एपिटाइजिंग क्या हुआ, वो तो एपिटाइजर्स थे, आपने कहा स्प्रिंग रोल्स और चिकन विंग्स वगैरह एपिटाइजर, लेकिन एपिटाइजिंग ऑर्डर कहा है ना, तो फिर वो क्या हुआ। आपने कहा है कि नॉट श्योर ऑफ माय आंसर, बट भूख बढ़ाने वाला क्रम या लाजवाब तरीका, भूख बढ़ाने वाला, समझ, ये है मतलब एपिटाइजिंग का, यू सी। तो जब ऑर्डर कहते हैं, वो नहीं आपने ट्रांसलेट किया नाज़नीन, ऑर्डर को। कितनी स्वादिष्ट महक है, वाह सलमा अहमद, कितनी स्वादिष्ट महक है। पर सुने, इसमें आप नहीं कह रही कि भूख जाग रही है, वो नहीं आपने कहा ना, एपिटाइजिंग में तो भूख है ना। ओके, मनहर।
3: हेलो, नमस्कार ईस्ट एफएम लिसनर्स, मनहर पटेल किसुमु। एक राजा जी होता है, किंग जिसको बोलता है, उसने पार्लियामेंट में, वो 80 साल का था, उसने पार्लियामेंट में बोला कि मेरे पास एक गधा है, उसको कोई अपनी लैंग्वेज में सिखा दे बोलना, तो मैं 5,000 असरफिया मीन्स गोल्ड कॉइन्स दे सकता हूँ। तो कोई आदमी ने बोला नहीं कि हम ये कर सकते हैं। उसने 3 दिन तक ये बोलना चालू किया, फिर एक 80 साल का बुढ़ा आया और राजा को बोलता है, मैं तो मेरा गधे को बोलना सिखा दूंगा, लेकिन मेरी शर्त एक है कि मुझे 10 साल चाहिए उसको ट्रेनिंग देने के लिए। तो राजा ने खुश होकर बोला, चलो हम देते हैं गधा, असरफिया और 10 साल की मुहलत। पर गधा जो नहीं बोला तो मैं तेरे को काट डालूंगा 10वें साल के आखिर में। तो उसने बोला ठीक है भाई। तो राजा को बोलता है मेरे को पहले 5000 असरफिया दो और गधा दो। तो दोनों दिया, फिर वो निकला उधर से उसके गांव आने के लिए। तो रास्ते में उसका फ्रेंड मिला तो बोला कि तूने ये पंगा लिया है पर बहुत भारी पड़ जाएगा। तो बोलता है नहीं नहीं ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। तो कह कैसे? तो कह देख पहले सुन, पहले जो गधा मर गया तो 10 साल में तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राजा जी को मैं बोल सकता हूँ कि गधा मर गया तो अभी दूसरा चाहिए और पैसा भी दूसरा चाहिए और टाइम भी दूसरा चाहिए। ओके, फिर कभी मैं मर गया तो भी कोई पूछने वाला तो है ही नहीं बाद में, और कभी राजा जी मर गए तो भी पिछले कोई बैठक में मेरे कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। खा पी के मजा करो और ऐसा जोक सुनते रहो। थैंक यू मनोहर पटेल की सुमो।
0: कोई मर जाए वो मर जाए, गधा मर जाए, हल तो कोई ना निकला, खुद मर जाए, सभी मर गए। मनहर पटेल। ओके शमीम, खावानू मन थाए जय एवी सुगंध, कितना लंबा है ना, खावानू मन ठाई जावे एवी सुगंध। है तो सही है तो सही, लेकिन मेरा यही था कि जरा छोटा हो, लेकिन छोटे हमें मिलते नहीं है एक्सप्रेशंस। भूख बढ़ाने वाला क्या है? भूख बढ़ाने वाला व्हाट? ऑर्डर को आप ट्रांसलेट कर लें, आपको मिल गया। ऑर्डर को कैसे करेंगे ट्रांसलेट?
2: अगर आप बोलते हैं ऐसा नहीं कहना तो फिर ऐसे बोल सकते हैं प्रवीण जी, लजजदार या भूख बढ़ाने वाला जो मतलब ऑर्डर देते हैं, यानी आदेश देते हैं।
0: हाँ रितु, वो मैंने ऑर्डर ODOUR है, ऑर्डर मतलब खुशबू, यू सी खुशबू है। सो भूख बढ़ाने वाली खुशबू, ये है आंसर। सो अरेंज फूड मेन्यू और प्लेटर, नहीं ये नहीं था दीपक। सोनल मोदा, स्वादिष्ट भूख लगाने, ये भूख लगाने वाले स्वादिष्ट खुशबू थी। सोनल यू हैड टू से खुशबू। कृपा करी ने मारो ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर ODOUR मतलब खुशबू है, ऑर्डर नहीं है, हुक्म नहीं है, ठीक है। और यहाँ मेरे जाम मने जामवानू मंगवाउचे, भूख बढ़ाने वाला नहीं, खुशबू डालनी थी आपने, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कोताहियाँ हो गई हैं, कोई बात नहीं, यही था कि भूख बढ़ाने वाली खुशबू। ओके, फिर भी बहुत लंबा लगता है।
4: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
5: Our client in the FMCG industry is seeking to recruit a building, structural and general maintenance manager. A bachelor's degree in civil or structural engineering, registered engineer by Engineers Board of Kenya, and a minimum of 15 years experience in building, construction or industrial maintenance, with at least 5 years in a senior management or leadership role within a manufacturing or large-scale infrastructure environment is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
6: Our client in the FMCG industry is seeking to recruit a talent partner, bachelor's degree in human resources, business or a related field, HR professional certification preferred, IHRM, CHRP, SHRM, CIPD, and a 5 to 8 years experience in recruitment or learning or HR business partner roles required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
4: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
7: More of Kenya's premier Asian mix. East FM.
8: East FM.

0: अपन है।
1: आज वाकई क्लास लगी हुई है, मिसेस धंजल भी शामिल हैं।
2: हेलो प्रवीण, गुड मॉर्निंग, मिसेस धंजल है। प्रवीण जी, ये है मुंह में पानी लाने वाला स्वादिष्ट भोजन और मुंह में पानी लाने वाली खुशबू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।
1: जी मिसेस धंजल, मुंह में पानी लाने वाली खुशबू, वाह बहुत अच्छे। और दिनेश, दिनेश शाह, मोडामा पानी आवे एवी खुशबू, बिल्कुल सही, मोडामा पानी आवे एवी खुशबू। दोनों मिसेस धंजल और दिनेश, वेल डन। और ऑर्डर सुगंध, सुगंध है, ओ नाजनीन, ओके, सुगंध किसी ने भी नहीं यूज़ किया, सोनल, सोनल ने यूज़ किया, रुचिकर सुगंध, रुचिकर, ओके, वी हैव टू एक्सप्लेन रुचिकर एज वेल। सुगंध तो आपने यूज़ कर लिया, ओके। ये भूख बढ़ाने वाली महक है, बिल्कुल सलमा, भूख बढ़ाने वाली महक, बिल्कुल। और मंजुला विश्वकर्मा,
3: अनिल जी, इसका होगा भूख वर्धक खुशबू, भूख वर्धक मतलब भूख बढ़ाने वाला,
1: वर्धक, बिल्कुल पता समझ में आ गया है, भूख वर्धक, बढ़ाने वाला, वाव। सो ये एक लफ्ज था एपिटाइजिंग के लिए। अब क्या करते हैं, एक गाना, फिर बाकी के मैसेजेस।

0: समय एक लफ्ज होता है हम उसकी बाल की खाल उतार लेते हैं कमाल है क्योंकि आप लिसनर्स की अलग-अलग भाषाएं हैं हिंदी है कुछ को संस्कृत आती है गुजराती है पंजाबी है क्या बात है बहुत अच्छा लगा अब मेरे ख्याल से मैं श्योर नहीं हूं कि हमने ये सुनाया है
1: प्रवीण जी आप मेरे मैसेज ही नहीं देखते हो मैंने मुहर बंद भी दिया था और अभी भी दिया है भूख वर्धक
0: तो भूख वर्धक तो मैंने पढ़ा है ना मैंने लोगों को कहा वर्धक इज अ वेरी गुड आंसर मुझे लगता है कि आप कभी कभी स्विच ऑफ कर देते हैं फॉर अ सेकंड अभी अभी मैं पढ़ कर गई हूँ आपका जो है मैसेज वो भी मैंने लगा दिया था इट वाज ऑन एयर शब्बीर अहमद बहुत खूब मुकेश एवरग्रीन जी अभी जो मैंने सुनाया है और गाना डुअट था अच्छा हेलो परवीन जी नेटवर्क प्रॉब्लम्स दैट्स व्हाई यू कांट हियर मंजुला विश्वकर्मा मे बी दैट इज़ व्हाई यू डिडंट हियर इट I think I know there's in the office at your farm. I can't hear you properly. हाँ क्योंकि आप किसी farm पर हैं हो सकता है that is possible. और Mrs. Dhanjal today nice list with new songs I've never heard. If possible add mine. शमा जले ना जले हाँ जल तू जलता है तू शमा जले हाँ तू जलता जा ओके मिसेस धंजल वो भी मैं करती हूँ और सलीम मेहर की बात
2: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी सलीम मेहर फ्रॉम लंदन थ्री साइंस ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अप्रिशिएट दोज हु लव यू हेल्प दोज हु नीड यू फॉरगिव दोज हु हर्ट यू Good morning, Praveen ji, to you and all your lovely babies, our listeners. Have a lovely day.
0: अच्छा सभी कहते हैं कि बस forgive, forgive, forgive या forget, forget, forget. ठीक है. चलिए वो भी यही आप भी कह कर गए हैं. सुंदर सुगंध. या पर सुंदर में भूख नहीं आ रही ना. आपने भूख का एलिमेंट यूज करना था जबीन हिरानी. सोनल मोदा मनपसंद सुगंध मनपसंद हो लेकिन उसमें फिर वो नहीं आता एलिमेंट ऑफ एपेटाइट ठीक है एपेटाइट आना चाहिए

0: दिल।
1: बिल्कुल सही मंजुला विश्वकर्मा। और समय अभी अभी मिसेज ज्ञान मिसेज दंजल ने कहा है कि मुझे तो ये गाना सुना ही दीजिएगा।

0: शाम सामने अभी अभी खबर आई है, एक्चुअली कल ये हुआ है रात, कि एक विमान कार्गो प्लेन जो माल बरदार होता है हवाई जहाज, शारजा से निकला था कराची के लिए, तो समिन ओमान के करीब इसमें कोई फनी नुक्स आया है। उन्होंने कहा पायलट ने कि एयरक्राफ्ट में कुछ हो रहा है गलत, तो समय अचानक 35 फुट नीचे आ गया 2 मिनट में, तो लग रहा है कि समंदर में वो क्रैश हो गया है। अमला सिर्फ 5 का था, बाकी जहाज में सामान भरा हुआ था, शारजा से कराची जाने वाला था। अब कहते हैं कि जहाज की खोज हो रही है। ये आपके लिए सिर्फ एक न्यूज़ थी। ओके, यहाँ चलते हैं किसके पास, रमेश हरिया। रमेश हरिया ने क्या कहा है?
1: आदाब परवीन जी, आज तो आपने सवाल पूछ के सभी श्रोताओं के मुंह में पानी ला दिया है। अगर आपको सुगंधित लिज्जतदार भोजन करना है दुनिया में कहीं भी, तो उसका लिस्ट मेरे पास है। अगर आप लंदन में हैं तो भरत गंगाराम से कांटेक्ट कीजिए, अगर आप किसी मुंह में हैं तो मनोहर पटेल से कांटेक्ट कीजिए, अगर आप मुंबासा में हैं तो सोनल मोड़ा से कांटेक्ट कीजिए, और अगर आप नैरोबी में हैं तो परवीन आदम जी को पूछ लीजिए कहाँ सुगंधित और लिज्जतदार भोजन मिलता है। शुक्रिया रमेश सरिया।

किचन। हाँ, काश ये आप पकाने वालों का नाम होता इनमें है। बहुत अच्छे रमेश हरिया और मिसे धन, थैंक यू माय डियर, दिस इज योर प्लस पॉइंट, यू लिसन टू एवरीबडी। हालांकि समय कुछ लिसनर्स मुझसे खफा भी हो जाते हैं, तूने 8 महीने पहले की फरमाइश नहीं पूरी की। फिर मैंने सोचा जा समय, कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता जल्दी, और फिर इतने ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं, मैं उनको पढ़ने में मसरूफ़ हो जाती हूँ। खुशबूदार खाना सोनल, ओके, पर मैंने एपिटाइज ऑर्डर की बात की थी, एपिटाइजिंग ऑर्डर, लजीज पकवानों का लुत्फ उठाना, बेमिसाल अंदाज के साथ रहो। और देखें भरत गंगाराम ने क्या खाने समझ क्या वैरायटी पेश की है, और इतनी खूबसूरत तस्वीर है, इसमें समोसे हैं, कुछ टिक्कियां हैं, कुछ कचुंबरी जिसे कहते हैं, कचुंबर है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से ढोकरा भी है, कमाल का थाल है ये लगा हुआ। भरत गंगाराम क्योंकि वो खुद केटरर है ना, तो उनके लिए ये आज का बहुत सवाल अच्छा था, खुशबूदार, खुशबूदार नहीं लज्जतदार। अब मेजर वांजा और यास्मीन वांजा, बहुत शुक्रिया आपका, समिन दीवाने पर बात हो रही थी ना,

झगड़ रहे हैं, आप कहीं से आ गए हैं, आपने सुना है उनकी लड़ाई को, आप कोशिश कर रहे हैं मीडिएट करने की। एक कहता है इसने मेरे साथ ये किया, इसने वो किया, आप उसको कहते हैं लेट इट बी, मतलब कि इतना ना झगड़ो, लेट इट बी। कितना आप गिला करेंगे तो समय लेट इट बी को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम क्या कहेंगे। 07011061106 पर आपने जवाब देना है। और रमेश भाई हरिया का शुक्रिया अदा किया है भरत गंगाराम ने, क्या बात है, थैंक यू। सोनल ने भी कहा है और मिसेस धंजल, रमेश हरिया, हाउ कैन यू फॉरगेट थीका, इवन यू कैन गेट हियर एपिटाइजिंग फूड, सच लवली फूड। बहुत अच्छा किया है मिसेस धंजल ने, आड़े हाथों लिया है रमेश हरिया।

0: तो मेरे डैड को कैसे फील होगा दो ही इज इन हेवन राइट नाउ एंड देन आई ऑलवेज थिंक ऑफ माई डॉटर शी इज अ ग्रोन अप यू नो इन दैट एज वेयर वट आई डू डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स हर एंड हर रेपुटेशन इज वेल बट इफ इट्स अफेक्टिंग दैट रेपुटेशन आई एम गोन टू स्पीक अबाउट इट आई एम नॉट गोन टू कीप क्वाइट इन अ सिचुएशन लाइक दिस बट इफ इट्स समथिंग लाइक दिस वेर देर इज अजम्पशंस प्रोबेबली आई विल नॉट एक्सप्लेन एंड सेड यू नो वट आई विल चूज पीस ओवर क्योस एंड मूव ऑन आपको लग रहा है कि अगर मैं मल्टी मिलियनर हूं तो वेरी गुड शायद आपकी जबान से ऊपर वाले के कान तक पहुंच जाए और मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊं और फिर मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाऊंगी और आपको भी एक गिफ्ट कर दूंगी है ना Thank you so much for playing along. Rasila, you said also that crazy people, how can anyone judge you or anyone through clothes or the car that you drive? That's not done. Thank you so, so much. It's 1 minute past two. Let's get into the next hour of the show. Keep it East FM.
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
2: बुधवार की खबरें ईस्ट एफएम पर पहले खबरों की सुर्खियां वकील के कत्ल पे लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या का बयान आती नस्लों के लिए नया फंड फ्रेंच नेता मगीन लपेन को चुनाव लड़ने की इजाजत और बलूचिस्तान में हमला 9 पुलिस अहलकार शहीद खबरें तफसील से लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या के सदर ने तश्वीश जाहिर की है वकील एस्टर किएगे के कत्ल पर चार्ल्स कंजामा का कहना है कि यह कानून पे हमला है इसलिए पब्लिक सेक्टर वकीलों की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए और लैंड रिकॉर्ड्स का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए सदर विलियम रूटो ने इंटरजेनरेशनल फंड के बिल पे दस्तखत कर दिए हैं जो सॉवरन वेल्थ फंड के नाम से जाना जाएगा मिनरल्स और पेट्रोलियम की आमदन से 30% आती नस्लों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा मटाटू मालिकैन ने पुलिस से मांग की है कि एहतजाज के दौरान भीड़ पे काबू पाने के लिए नए तरीके आजमाए जाएं मटाटूज को रोकने से पब्लिक को परेशानी और सेक्टर को नुकसान होता है आलमी खबरें पेरिस की अपील अदालत ने मगीन लपेन पे लगे ईयू फंड्स के नाजायज इस्तेमाल के आरोप को बरकरार रखा है मगर सजा कम करके नेशनल पार्टी की अध्यक्ष को चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया है शर्त रखी गई है कि आप एंकल टैग पहने रखेंगी इस शर्त को वो मानती हैं या नहीं बयान का इंतजार रहेगा बलूचिस्तान के ज़ियारत ज़िले में तामीर की जगह पर हमला हुआ है 9 पाकिस्तानी पुलिस के आदमी जान बहक हुए हैं कई अफसरान लापता हैं हुकूमती बयान में दावा किया गया है कि तालिबान के 15 मेंबर्स मार दिए गए हैं श्रीलंका के कैद खाने में दंगे फसाद में 26 कैदियों की मौत वाकया हुई है 7 इनमें जेल के गार्ड्स थे 100 जख्मी हुए 2 ग्रहों में लड़ाई के दौरान कैदियों ने गार्ड्स की बंदूकें छीन गोलियां चला दी फसाद नशा आवर दवाइयों के रिंग का पता देने पर शुरू हुआ आला हुक्मरान आयतुल्ला खामनेई की मैयत को इनकलाब

That's Blink 182 FM KS Premier Mix. This is the City Lights with Vishal, and abhi tak kisi ko sahi jawab nahi mila hai for the translate challenge. So in English, the movie, it's a three-word movie in Hindi. Hindi mein teen shabd hai, and in English it sounds like this: If she smiles, she is trapped. Aksar ye dialogue bhi hota hai filmon mein Hindi mein ke agar koi ladki कैसे बोलूँ. ओके, आई बी गिविंग यू द क्लू इफ आई से एनीथिंग एल्स, बट आपको क्लू दे देता हूँ. दिस मूवी स्टार्स वी गॉट परिणीति चोपड़ा एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा इन द लीड रोल्स. कौन सी मूवी है ये दैट आई एम लुकिंग फॉर? परिणीति चोपड़ा एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा इन द लीड रोल्स. वी गॉट अदा शर्मा एज वेल एंड मनोज जोशी एंड करण जौहर हैज ऑल्सो प्लेड ए कैमियो इन दिस मूवी. कौन सी मूवी है ये? अगर लड़की को देखा और उसने स्माइल किया तो थ्री वर्ड मूवी इन हिंदी. You can share your answers with me on 0701 106 106. Your favorite.